आवाज की दुनिया के दोस्तों, महक में सुखदेव जसवाल का सादर नमस्कार। दस मई के इस महक कार्यक्रम में आपका आदर है, अभिनंदन है। घर में अगर बच्चों की चहक हो और अच्छा संगीत हो तो घर में खुशियों की महक फैल जाती है। ऐसी महक फैलाता है आपका अपना कार्यक्रम महक। अच्छे मनोरंजन की कोशिश का वादा लेकर एक बार फिर हाजिर हुआ हूं सुखदेव जसवाल।

आज के कार्यक्रम में हम पेश करेंगे आपके लिए, आपके मनोरंजन के लिए, कुछ आपकी पसंद के, कुछ मेरी पसंद के कैफी आज़मी जी के गानों का कार्यक्रम। कैफी आज़मी जी जो अपने गानों में दिल उंडेल देते हैं और हमारे दिल में जगह कर लेते हैं। हम श्रद्धांजलि देंगे परमवीर चक्र विजेता होशियार सिंह दाहिया को। हम याद करेंगे महाराणा प्रताप जी को और हम याद करेंगे सत्यजीत रे को।

मदर्स डे है आज, और आज के इस मदर्स डे के अवसर पर आप सभी माओं को हैप्पी मदर्स डे। माएं जो प्यार की मूर्ति हैं, संस्कार देती हैं, चोट लगने पर दिलासा देती हैं, उदास होने पर दिल बहलाने के सभी तरीके जानती हैं, और जब माँ कहती है एक दूंगी तो चुपचाप मान लेते हैं जो भी माँ कहती है। सभी माओं को एक बार फिर हैप्पी मदर्स डे, और इस मदर्स डे के अवसर पर आप सभी माओं के लिए मैंने चुना है ये माँ के स्वरूप को श्रद्धांजलि देने वाला गाना। फिल्म है करण अर्जुन।

जहाँ माँ बच्चों का बंधन अटूट बंधन होता है और कभी कभी लगता है ये कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन दुनिया है जहाँ है, कभी ना कभी हर चीज़ समाप्त हो जाती है, और इसीलिए शायद ये गाने बने हैं कि ये बंधन केवल इस जन्म का नहीं, आने वाले कई जन्मों का है। और अब चलते हैं उस ओर जिस ओर इस कार्यक्रम की रूपरेखा हमें ले जा रही है, वो है कैफी आज़मी जी के गानों का कार्यक्रम। कैफी आज़मी जी जो दिल से लिखते थे और अपना पूरा दिल उंडेल देते थे अपने गानों में, और ऐसा उंडेलते थे कि हमारे दिल को भी चीर कर हमारे दिल में बस जाता था उनके गीतों का जादू, और इसी जादू को आज आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ महक 2RRR 88.5 FM पर, जिसे आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं 2RRR.org.au पे, लिसन ऑनलाइन प्ले बटन, और आप अपने मोबाइल पर भी इसी तरह से सुन सकते हैं, या फिर कम्युनिटी रेडियो प्लस ऐप डाउनलोड करके अपने फेवरेट ऐप स्टोर से अपने मोबाइल के साथ जहां भी हों सुन सकते हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम महक। अपनी पसंद यहां स्टूडियो में भेजने के लिए बहुत ही आसान है, फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए 02-9816-2777, 02-9816-2777, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपका कार्यक्रम में शामिल करने का आपको और आपके गाने को।

कैफी आजमी। जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 14 जनवरी 1919 को। जन्म का नाम अथर हुसैन रिजवी। शायर बने तो नाम रखा कैफी आजमी अपने जन्म के शहर पर, आजमगढ़ पर। उनके 3 भाई हैं और तीनों के तीनों शायर। शादी की शौकत आजमी से।

देश के बंटवारे के समय ब्रिटिश सरकार के निशाने पर थे कैफी आजमी, इसलिए छुप कर रहते थे गिरफ्तारी से बचने के लिए। परिवार बॉम्बे से कराची के लिए समुद्री जहाज पर सवार हुआ। कैफी आजमी नहीं पहुंच सके और परिवार जहाज पर बैठकर कराची के लिए रवाना हो गया।

आज़ादी के बाद भी कैफी आज़मी को कई बार पाकिस्तान का वीज़ा नहीं दिया गया, हालांकि उनका पूरा परिवार पाकिस्तान में रहता है। 11 साल की उम्र में एक गज़ल को लेकर एक मुशायरे में पहुंचे। गज़ल मुशायरे के प्रेसिडेंट को बहुत अच्छी लगी और सुनने वालों को भी बहुत पसंद आई, बहुत प्रशंसा मिली। लेकिन पिताजी को विश्वास नहीं हुआ कि कैफी आज़मी ने यह गज़ल खुद लिखी। वो समझते थे कि उसने अपने भाई की गज़ल चोरी की है। भाई के मना करने के बाद भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उसे एक शेर दिया और कहा, इस शेर पर गज़ल लिखो। कैफी आज़मी ने ये शर्त कबूल की, गज़ल पूरी की। पूरे देश में ये गज़ल मशहूर हुई और एक तरह से आग लगा दी, खास तौर पर जब बेगम अख्तर जी ने इस गज़ल को अपनी आवाज़ दी। एक अमीर घर से आने के बावजूद कैफी आज़मी जी ने सब जो सहूलतें थीं, सब जो अमीरी के बातें थीं, वो सब छोड़कर कानपुर की एक मिल में काम करने लगे। 24 साल की उम्र में प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के मेंबर भी बने। 1951 में पहली फिल्म बुजदिल के लिए एसडी बर्मन साहब के संगीत में गीत लिखा। फिर और फिल्में मिलीं, यहूदी की बेटी, मिस पंजाब मेल, ईद का चांद। उन्हें कागज़ के फूल, हकीकत, गर्म हवा, मंथन, कोहरा, अनुपमा, शोला और शबनम, नौनिहाल, हंसते जख्म, हीर रांझा जैसी फिल्मों के गानों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। तो आइए चलें इस सफ़र पर जिसमें आज आपके लिए पेश कर रहा हूँ कैफी आज़मी जी की कलम से निकले हुए गीत, हमारी फिल्मों को सजाने वाले। ये है रफ़ी साहब की बेहतरीन आवाज़, फिल्म है शोला और शबनम और संगीत दिया है खयाम साहब ने, 1961।

0: वो खरीदार नहीं हो सकता।
1: मोहम्मद रफ़ी साहब की बेमिसाल आवाज़ थी इस गाने में और फिल्माया गया था धर्मेंद्र जी पर, उनकी शायद पहली फिल्म थी ये, और क्या गाना था। और अब 2:22 और समय संदेशों का, कहीं जाइएगा नहीं, संदेशों के बाद फिर हाजिर होऊंगा कैफी आज़मी जी के गाने लेकर महक 2RRR 88.5 FM पर, जो आपके लिए पेश किया जाता है हर इतवार 2 से 4 बजे तक। पेश करता हूं मैं सुखदेव जसवाल। कार्यक्रम आपको पसंद आता हो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए ताकि वो भी आपकी पसंद को अपनी पसंद बना सकें। और अब बहुत ही अच्छा समय है अपनी पसंद हम तक पहुंचाने का, 02-9816-2777 02-9816-2777।
2: Hi, I'm Rod Pitorino, licensee of the Bayview Hotel in Gladesville. Come and experience one of Sydney's finest dining bistros with an extensive food and drinks menu, including the freshest market seafood, prime char-grilled steaks, succulent roasts, and the ever-popular chef specials. At the Bayview Hotel, you can feast or snack in the restaurant or simply relax with friends in the bar on our lounges with live music 3 nights a week.
3: 2RRR sponsor the Bayview Hotel in the centre of Gladesville on Victoria Road with its friendly old-fashioned hospitality. The Bayview Hotel, it's the place to be.
4: Are you living in, investing in, or managing a strata property in Ryde? Join a free practical webinar designed to help strata owners, residents and managers get more out of strata living. In this 90-minute online session, Wednesday, May 20, noon to 1:30 p.m., you'll learn how to add value to your strata property, from improving shared facilities and bin bays to installing solar panels, use bylaws to restore harmony, tackle disruptive behavior, and pull waste disposal practices before they escalate, solve common strata nuisances, illegal renovations, rubbish, and more. Details 99-528222.
5: We interrupt our program to bring you this important message.
6: If you love listening to 2RRR, you should join the community and become a member. 2RRR membership allows you to get involved in all aspects of broadcasting and supports 2RRR to stay on air. Download an application at 2RRR.org.au or phone us on 9816 2988 for more information. Let your voice be part of your local sound. 2RRR.
7: Think Vivid Sydney's One Big Light Show? It's time to think again. They've got musicians performing at legendary landmarks, creative visionaries and thought leaders tackling our biggest questions, and chefs cooking up unbelievable flavors. Go beyond at Vivid Sydney from May 22nd to June 13th. Plan your trip today at vividsydney.com.
1: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है कैफी आज़मी जी के फिल्मों के गानों के इस कार्यक्रम में, आज 10 मई के इस कार्यक्रम में। सत्यजीत रे, जन्म 2 मई 1921, पहली फिल्म पाथेर पंचाली 1955 की, और इंटरनेशनल अवार्ड्स में बात करें तो उन्हें 11 फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। बचपन से ही फाइन आर्ट्स में रुचि थी सत्यजीत रे की। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से बीए किया इकोनॉमिक्स में। माँ ने जोर दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन में वो जाएं। सत्यजीत रे कलकत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे और शांति निकेतन इंटेलेक्चुअल जीवन के बारे में उनकी राय कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। माँ के दबाव और टैगोर जी के लिए इज्जत जीत गए। शांति निकेतन पहुंचकर उनके विचार बदल गए। नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी से बहुत कुछ सीखा सत्यजीत रे ने। मुखर्जी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई सत्यजीत रे ने, द इनर आई। अजंता एलोरा एलिफेंटा केव्स देखे, इंडियन आर्ट के लिए उनके दिल में अत्यंत ही इज्जत जागी। डीजे केन्स में जूनियर विजुअलाइजर की नौकरी की 80 रुपए महीने की, लेकिन गोरे और देसी एम्प्लॉयज में तनख्वाह के भेदभाव को देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उसका विरोध किया। डीके गुप्ता के सिग्नेट प्रेस में काम शुरू कर दिया। जिम कॉर्बेट के मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, जवाहरलाल नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताबों के कवर डिज़ाइन किए, और पाथेर पंचाली को बच्चों के लिए प्रकाशित किया, और अंतीर बेपू द मैंगो सीड विसल, आम अंतीर भेपू द मैंगो सीड विसल के रूप में इतना प्रेम, और इस नॉवल की कशिश ने उनको पहली फिल्म इसी पर बनाने पर मजबूर किया। अगली फिल्म अपराजितो ने सही मायनों में सत्यजीत रे को अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकार बनाया। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लायन जीता। फिर आई अप्पू ट्रिलजी, और अप्पू ट्रिलजी ने अमर कर दिया सत्यजीत रे को। यह तीन फिल्मों का सेट था। मार्टिन स्कॉर्सीसी, जो हॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर रहे हैं, फ्रांसिस फोर्ड कपोला भी, जो हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर रहे हैं, जेम्स आइवरी जिन्होंने जो यूके के थे और बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, उन्होंने आज के डैनी बॉयल तक सत्यजीत रे के स्टाइल से प्रभावित होने का दावा किया है। जापान के अरी कुरुसावा ने भी उनकी प्रशंसा की। सत्यजीत रे 23 अप्रैल 1992 को इस दुनिया से अलविदा कह गए। उन्हें 32 नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया, ऑनररी ऑस्कर से सम्मानित किया गया, और 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये थी कुछ बातें सत्यजीत रे जी के बारे में। उम्मीद है उनके जीवन की इन बातों ने आपको प्रभावित किया होगा। आइए चलें वापस कैफी आजमी जी के गानों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। फिल्म है अनुपमा, आवाज़ है बेमिसाल लता जी की। कुछ दिल ने कहा।

ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, दिल से निकली हुई आवाज़ सीधी पहुंची दिल तक, और पहुंचती भी क्यों ना, उनके दिल की आवाज़ जो थी कैफ़ी आज़मी जी के, और उनके दिल की आवाज़ सबके दिलों में पहुंच गई, और पहुंची थी रफ़ी साहब की आवाज़ के जादू में, कैफ़ी आज़मी जी की दिल की आवाज़ बहुत ही प्यारी, ये दिल की आवाज़ है, फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी, और जी नहीं माफ़ कीजिए, उनकी आवाज़ ये थी फिल्म सोने की चिड़िया से, बात करूँगा बहारें फिर भी आएंगी कि आगे चलकर, तो सोने की चिड़िया फिल्म की ये आवाज़ रफ़ी साहब के आवाज़ के रूप में दरअसल आवाज़ थी कैफ़ी आज़मी के दिल की, और बहुत ही प्यारा गाना है ये, रात भर का है मेहमा अंधेरा।

0: 2:40 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और अब समय है संदेशों का. कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि संदेशों के बाद जारी रहेगा कैफी आजमी जी के गानों का ये कार्यक्रम महक 2RRR 88.5 FM पर. और अपनी फरमाइश हम तक भेजने के लिए 02-9816-2777 हमारा नंबर 02-9816-2777.
1: Hello, I'm Karen Lang, Director of Lady Anne Funerals. We are a family-owned and operated business in Sydney, and we have proudly served our local community for over 18 years.
2: Lady Anne Funerals aims to exceed expectations by fulfilling client requests to remember and honour their recently passed loved ones. Throughout the process, clients are supported by the same funeral arranger from the small team of ladies in the office at Bladesworth. If you need any guidance or have questions, please call Lady Anne Funerals on 1300 740074. That's 1300 740074.
1: Lady Anne Funerals, where every family is special.
3: The bats are about, and you can be too. Come and celebrate Bat Night with a bat count at Tarpon Creek, organised by Sydney Wildlife. Its aim is to track the health of a local grey-headed flying fox population, which is an endangered species. It's all happening on Saturday the 23rd of May, with the bat count taking place between 4:30 and 6 p.m. Registration is essential. For more details, email Hunters Hill Council's Bushland Management Officer, Jackie Vollmer, on VOLLMERJ at huntershill.nsw.gov.au.
4: Check out 2RRR's website for weekly community news articles, merchandise, how to volunteer or donate to our station, and our program guide. That's 2RRR.org.au.
0: संदेशों के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर महक 2RRR 88.5 FM पर. आज कैफी आजमी जी के गानों के इस कार्यक्रम में और आज आपके लिए अगला गाना जो पेश कर रहा हूँ वो है फिल्म बहारें फिर भी आएंगी. धर्मेंद्र जी की बेहतरीन फिल्म और उसका ये बेहतरीन गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में. धर्मेंद्र जी के साथ इस फिल्म में थी माला सिन्हा जी और इस गाने के बाद आप चलेंगे थोड़ा सा ब्रेक लेकर कैफी आजमी जी के गानों से.

माफ कीजिए इस रुकावट के लिए. मैं कोशिश करता हूं कि यह रुकावट ना आए और आप तक पूरा गाना पहुंच सके और आप इस गाने का आनंद ले सके. तो आइए चलें इस गाने की.

महाराणा प्रताप जन्म हुआ मेवाड़ के राजा उदय सिंह और रानी जयवंता बाई के घर 9 मई 1540 को। 1972 में पिताजी की मृत्यु के बाद राज दरबारियों ने 4 भाइयों में से सबसे बड़े प्रताप को राजा चुना, उदय सिंह किया उत्तराधिकारी और वो बने महाराणा प्रताप। 1568 में राजा उदय सिंह और मुगलों के बीच लड़ाई में उदय सिंह की हार हो गई थी। मेवाड़ की उपजाऊ भूमि पर मुगलों का कब्जा हो गया था। अरावली की पहाड़ियों और जंगली इलाके पर ही प्रताप का राज था। महाराजा अकबर मेवाड़ से होकर गुजरात के लिए रास्ता चाहते थे। उन्होंने कई दूत भेजे बातचीत के लिए। इनमें आमेर के राजा मानसिंह भी शामिल थे। जब बातचीत से हल नहीं निकला तो युद्ध तय था। 18 जून 1576 को राज समंद के पास हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप से युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप के पास 3,000 घुड़सवार और 400 भील सैनिक थे। भील एक जाति है राजस्थान की, तो 400 भील सैनिक थे। अकबर के पास 10,000 की सेना थी जिसका राजा मानसिंह नेतृत्व कर रहे थे और दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं। घायल अवस्था में हार मानकर महाराणा प्रताप पहाड़ों में चले गए क्योंकि उनकी सेना का भी भारी नुकसान हुआ था और आगे मुगलों के साथ मुकाबले के लिए वो तैयार नहीं थे। गोकुंडा पर राजा मानसिंह का कब्जा हो गया। सितंबर 1576 में मुगलों ने उदयपुर, गोकुंडा और कुंभलगढ़ पर पूरा कब्जा कर लिया। 1579 के बाद पंजाब, बंगाल और बिहार में विद्रोह के बाद मेवाड़ पर मुगलों की पकड़ कमज़ोर पड़ गई। 1582 में महाराणा प्रताप ने दीवैर पर हमला किया और जीत हासिल की। 1584 में मुगलों ने फिर मेवाड़ पर हमला किया लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का काफ़ी इलाका चित्तौड़गढ़ और मंगलगढ़ के सिवा जीत लिया। अपनी नई राजधानी बनाई चावंद। 1583 में पश्चिमी मेवाड़ का देवार अमेत और मजरिया, जावर और कुंभलगढ़ भी जीत लिया। अच्छी बारिशों के होते खुशहाली लौट आई, अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई। जो लोग मेवाड़ छोड़कर गए थे वापस आने लगे। 1585 के बाद चित्तौड़गढ़ के पश्चिमी इलाके भी जीत लिए लेकिन चित्तौड़गढ़ पर जीत का सपना पूरा न हो सका। 19 जनवरी 1597 के दिन शिकार करते हुए 56 साल की उम्र में उन्हें गहरी चोटें लगीं और उनकी मृत्यु हो गई। उनका बेटा अमर सिंह उनका उत्तराधिकारी बना। मृत्यु से पहले महाराणा प्रताप ने अपने बेटे को हिदायत दी, मुगलों के साथ कभी ना मिलना और चित्तौड़गढ़ को जीत कर ही दम लेना। महाराणा प्रताप का यश राजस्थान और पूरे भारत में माना जाता है एक वीर के रूप में। किसी अन्य राजपूत राजा के साथ के बिना वो मुगलों से टक्कर लेते रहे और हराते रहे। दक्कन के जनरल मलिक अंबर और महाराजा शिवाजी उनसे प्रभावित होकर उनसे सीख लेकर मुगलों से लड़ते रहे। 2007 में दिल्ली के संसद भवन में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने महाराणा प्रताप की घोड़े चेतक पर
प्रतिमा का अनावरण किया। उदयपुर में भी उनके घोड़े चेतक पर प्रतिमा है। ये थी कुछ बातें देशभक्त महाराणा प्रताप जी के जीवन के बारे में। आइए चलें वापस कैफी आज़मी जी के गानों के इस सफ़र पर। अगला गाना जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो है राजेश खन्ना की शुरू की फिल्मों में से एक फिल्म आखिरी खत। चेतन आनंद जी ने बनाई थी एक फिल्म, बहुत ही प्यारी फिल्म है। इसमें कहानी है एक माँ की और एक बच्चे की, और बच्चा जो है वो खो जाता है माँ के मरने के बाद, और पिता कैसे उसकी ढूंढ करते हैं, फिल्म की कहानी का आधार है। लेकिन बहुत सी दिलचस्प बातें हैं इस फिल्म में, जैसे कि लता जी की आवाज़ में ये बेहतरीन गाना जिसे आज महक 2RRR 88.5 FM पर पेश कर रहा हूँ आपके।

और अगला गाना जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कैफी आसमी जी का, वो है बहुत ही एक संजीदा गाना, और गाना है फिल्म नौनिहाल से, जो फिल्म में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अंतिम यात्रा पर बैकग्राउंड में गाया गया है, सुना गया है। बलराज सहनी साहब की बहुत ही बेहतरीन फिल्म और इंद्राणी मुखर्जी की बेहतरीन फिल्म, तो पेश है आपके लिए मेरी आवाज़ सुनो।

कर्नल हुशियार सिंह दाहिया, यह है नाम उस वीर का जिसको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया इंडो पाकिस्तान की लड़ाई में, 1971 की लड़ाई में। हुशियार सिंह दाहिया का जन्म हुआ 5 मई 1936 को हरियाणा के सिसाना गांव में, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। गांव के स्कूल से पढ़कर जाट कॉलेज रोहतक में दाखिला लिया। एक साल की पढ़ाई की और उसके बाद सेना की राह ली। द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट बने। कमीशन मिलने के बाद 30 जून 1965 को लेफ्टिनेंट का प्रमोशन मिला। 1965 की इंडो पाकिस्तान वॉर में राजस्थान सेक्टर में लड़े। मेंशन इन डिस्पैचेस में उनका जिक्र हुआ उनकी बहादुरी का। कैप्टन प्रमोट हुए 30 जून 1969 को। इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 तीन ग्रेनेडियर्स में मेजर रैंक से सी कंपनी की कमांड संभाली। 15 से 17 दिसंबर 1971 मिशन दिया गया दुश्मन के जरपाल पोस्ट पर कब्जा करने का। ये एक पूरी तरह से सुरक्षित और भारी हथियारों से लैस पोस्ट था। मेजर हुशियार सिंह की सी कंपनी के हमले का तेज जवाब दिया गया। मेजर हुशियार सिंह खुद जवानों का हौसला बढ़ाते रहे, दुश्मन के पोस्ट पर कब्जा करने में सफल हुए। अगले दिन दुश्मन ने काउंटर अटैक किया। भारी गोलीबारी के चलते अपने बचाव की परवाह न करते फिर एक ट्रेंच से दूसरे ट्रेंच जवानों का हौसला अफजाई करते हुए, उनकी हौसला अफजाई के फलस्वरूप दुश्मन के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया उनकी कंपनी सी ने। तीसरे दिन दुश्मन ने फिर अटैक किया, इस बार आर्टिलरी फायर की सपोर्ट दी। मेजर हुशियार सिंह बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन अपनी चोट की परवाह किए बिना वो फिर एक बार एक ट्रेंच से दूसरे ट्रेंच तक जवानों का हौसला अफजाई करते रहे। और तभी मीडियम मशीन गन पोस्ट के पास शेल गिरा और मीडियम मशीन गन चलाने वाला जवान शहीद हो गया और उसे एमएमजी को चलाने वाला कोई नहीं रहा। एमएमजी का महत्व समझते थे मेजर हुशियार सिंह। बुरी तरह से घायल होने के बावजूद मीडियम मशीन गन एमएमजी संभाली और दुश्मन पर भारी पड़े। दुश्मन पीछे हट गया 85 लाशें छोड़कर, जिनमें कमांडिंग ऑफिसर और तीन अन्य ऑफिसर्स की लाशें भी शामिल थीं। सीज फायर होने तक मेजर हुशियार सिंह ने पोस्ट छोड़ने से इनकार कर दिया। उनके साइटेशन में लिखा गया, थ्रू आउट दिस ऑपरेशन मेजर हुशियार सिंह displayed most conspicuous gallantry, indomitable fighting spirit and leadership in the highest traditions of the Indian Army. इस citation के साथ उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया 30 जून 1976 को। 8 अप्रैल 1983 को लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में प्रमोशन मिली। मई 1988 को कर्नल रैंक पर वो रिटायर हुए और जयपुर में बस गए, लेकिन अपने गांव सिसाना हरियाणा में जाते रहते, समय समय पर लोगों से मिलते रहते और सेना में भर्ती होने के लिए उन्हें इंस्पायर करते रहते, प्रेरित करते रहते। 6 दिसंबर 1998 61 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक के कारण वो चल बसे। सलाम ऐसे वीर जवान को जिसने देश के लिए अपनी जान दी। और अब बारी है वापस जाने की, कैफी आजमी जी के गानों की तरफ। और आइए चलें
उनके गानों की ओर एक बार फिर और आनंद लें उनकी गहरी सोच और उनके दिल की आवाज़ का। तो अगला गाना जो कैफी आज़मी जी का लिखा हुआ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो बहुत ही प्यारा गाना है और ये गाना है एक बहुत ही दिल को छूने वाला तो है ही क्योंकि कैफी आज़मी जी का हर गाना दिल छूने वाला होता था और ये गाना भी उन्हीं की कलम से आया है तो ऐसा ही होगा और फिल्म है हंसते हीर रांझा। बहुत ही प्यारी फिल्म थी और चेतन आनंद जी ने डायरेक्ट की थी ये फिल्म

नासिक TCS ऑफिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऑफिस में हुए धर्म परिवर्तन रैकेट की आरोपी निदा खान को पुलिस ने इस हफ्ता संभाजी नगर से गिरफ्तार कर लिया। मामला सामने आने के बाद से वो फरार थी। गिरफ्तारी के बाद उसे नासिक पुलिस के हवाले कर दिया गया। 25 दिनों से पुलिस की स्पेशल टीम उसकी तलाश कर रही थी। उसने इंटरिम बेल के लिए भी याचिका दी थी जो खारिज कर दी गई अदालत के द्वारा। निदा खान पर उत्पीड़न और जबरदस्ती के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये समाचार था 8 मई जनसत्ता का, और 10 मई जनसत्ता समाचार पत्र में समाचार आया कि पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे ईडी भी कहते हैं शॉर्ट में, ईडी ने कथित 100 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ की 5 जगहों पर ईडी ने रेड डाली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस कदम की आलोचना की और कहा, आज फिर एक बार भाजपा की ईडी संजीव अरोड़ा के घर आई। एक साल में यह तीसरी बार है जब भाजपा की ईडी उसके घर आई, और पिछले महीने में यह दूसरी बार है, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। संजीव अरोड़ा सामाजिक कार्यों में भी जुड़े हैं, जैसे कि कृष्ण प्राण ब्रेस्ट कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट, कृष्ण प्राण ब्रेस्ट कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ दयानंद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर हैं, वेद मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं और सतलुज क्लब से जुड़े हैं। मेरा विचार इस बारे में ये है, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की जीत के बाद अब लगता है बीजेपी का अगला निशाना पंजाब है। पहले सरकारी और राजनीतिक हस्तियों पर केस किए जाएंगे, जैसा कि ये केस हुआ है, और उन्हें बदनाम किया जाएगा। फिर अकाली दल के साथ गठबंधन होगा, जोरों के प्रचार की शुरुआत होगी और आम आदमी पार्टी नेताओं की खरीद जारी रहेगी। 7 को तो खरीद ही लिया है, आगे देखते हैं कितने खरीदते हैं, और ये तो सिर्फ शुरुआत ही होगी। जैसा कि मशहूर है फिल्मी डायलॉग, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन बाकी है महक 2RRR 88.5 FM पर कैफी आजमी जी के गानों के इस कार्यक्रम में, और बहुत से गाने, जैसे कि ये गाना जो है फिल्म हकीकत से, बहुत ही प्यारा गाना है, और एक बार फिर लगता है कैफी आजमी जी के दिल से निकली हुई ये आवाज़ है जो पहुंच गई सुनने वालों के दिलों में।

ये समाचार है जनसत्ता समाचार पत्र से 8 मई का। आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्रों ने इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप शुरू किया गैलेक्स आई के नाम से। गैलेक्स जो गैलेक्सी से लिया गया है, गैलेक्स आई, आई का मतलब आँख। तो उन्होंने अपना पहला सैटेलाइट दृष्टि इतवार को सफलतापूर्वक लॉन्च किया पिछले इतवार को। ये संसार का पहला सैटेलाइट है जो ऑप्टिकल और रेडार इमेजिंग को एक साथ कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गैलेक्स आई टीम को बधाई दी और कहा, भारत की स्पेस यात्रा में बड़ा कदम। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क ने भी बधाई का संदेश भेजा। गैलेक्स आई के सीईओ सुयश सिंह का कहना है, अब जब सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंच गया है, हमारा ध्यान उसे कमीशन करने पर है, यानी उसे चालू करने पर है। मिशन दृष्टि कैलिफोर्निया के स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। सैटेलाइट से डिफेंस, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट और समुद्री निगरानी के क्षेत्रों में काम होगा। और आपको बता दूं कि एक स्पेस एक्स स्टेशन जो है और फैल्कन 9 रॉकेट जो है वो एलोन मस्क का है। और ये गाना जो अगला आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, कैफी आजमी जी का है और फिल्म है हिंदुस्तान की कसम।

जनसत्ता समाचार पत्र में ही समाचार आया 10 मई को तमिलनाडु में टीवीके पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट्स जीती हैं और ये पार्टी खड़ी की है वहां के एक अभिनेता विजय ने। अब वो कुछ अन्य पार्टियों के साथ तमिलनाडु में सरकार बनाने वाली है। जोसेफ विजय चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो अभिनेता से राजनेता बने हैं। कथित तौर पर जोसेफ विजय के साथ जो है शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी शामिल होंगे। कांग्रेस ने अपनी 5 सीट का समर्थन दिया है टीवीके पार्टी को। और मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, बहुत लंबा नाम है, शॉर्ट में इसे मीटर कहते हैं, MITR और MITRV। और इस टेक्नोलॉजी से लैस भारत की Agni-5 जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया इस बीते सप्ताह। सैकड़ों किलोमीटर के फैले हुए दुश्मन के टारगेट्स को निशाना बना सकती है Agni-5 जिसका परीक्षण किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में। Agni-5 की रेंज 5000 किलोमीटर तक की है। Agni-5 को धरती से, हवाई जहाज से और समुद्री जहाज से और सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। समुद्र से सबमरीन से लॉन्च करने वाला देश बना है भारत, USA, रशिया, UK और फ्रांस और चीन की गिनती में। और अब चलें अगले गाने की ओर। और अगला गाना जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो बहुत ही एक बेहतरीन गाना है और ये है तुम्हारी जुल्फ के साए में। और ये है, बहुत ही प्यारी फिल्म थी और बहुत ही एक मशहूर फिल्म थी नौनिहाल, उससे है। और इसकी एक केवल झलक सुनाऊंगा, केवल आपको दिखाने के लिए, सुनाने के लिए कि ये गाना कितना बेहतरीन है।

और आइए चलें उन बातों की ओर जो हैं हमारी जन्मभूमि की, कुछ इधर की कुछ उधर की। भगवंत मान सीएम पंजाब के ओएसडी हैं, सहयोगी सनटेक सिटी, प्लानर एबीएस टाउनशिप, एटीएस बिल्डर्स, धीर कंस्ट्रक्शन के अजय सहगल, और उनके समेत 12 जगहों, उनके घर के समेत उन 12 जगहों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने छापे मारे, यानी ये एक और छापा ईडी का आम आदमी पार्टी के नेता भी नहीं, ये कार्यकर्ता कह सकते हैं उनकी उन पर एक जगह जहां ईडी का छापा पड़ा 9वीं मंजिल पर है, जहां से 500 रुपए के नोटों से भरे 2 बैग फेंके गए। लगता है पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी है। एक बार फिर वेस्ट बंगाल के एसआईआर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू के कारण वोटर लिस्ट से निकाले गए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया, लेकिन केस बर्खास्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें अत्यंत अपमानजनक लगा, यानी उनको जिन्होंने कि अर्जी डाली थी कि उनकी बात सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने कहा, ये कोई कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल आएगा, अगली बार फिर वोट दे लेना। ऐसा कहते हुए दिखाया कि कितनी लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है उनमें और लैक ऑफ एम्पथी है। पश्चिम बंगाल में नए सीएम का ऐलान कर दिया गया है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को इस बीते इलेक्शन में हराया, भारत के नए सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रिटायर्ड जनरल एनएस रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी होंगे। 26 जनवरी 1982 से शुरू हुई भारत की पहली लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स, नाम सुना होगा आपने, पहली बार मई के महीने में आरंभ हो जाएगी। कथित तौर पर ऐसा भारी मांग के कारण किया जा रहा है, और भारी मांग के कारण आज हम जो कार्यक्रम पेश कर रहे हैं कैफी आजमी जी के गीतों का, उसमें कुछ गीत नहीं शामिल कर सके, और कुछ गीत जो शामिल किए हैं और पूरे नहीं सुना पा रहे हैं वो सिर्फ समय की कमी के कारण है। दिल बहुत चाहता है कि ये गाने पूरे आपको सुनाऊं। ये है फिल्म अर्थ, और फिल्म अर्थ का ये गाना जगजीत सिंह साहब ने गाया है।

और एक गाना आया था जो फिल्म भी नहीं चली थी और एक्टर भी नहीं चला था, वो शायद इसी फिल्म में आया था, लेकिन ये गाना किसी वजह से काफ़ी लोगों ने पसंद किया और ये गाना है, सुनते ही आपको याद आ जाएगा।

बातें कुछ हमारी कर्म भूमि की करने का है ये समय। सीरिया में आईसिस के साथ काम करने वाली और उनसे मिलकर चलने वाली चार महिलाएं 9 बच्चों के साथ वापस ऑस्ट्रेलिया आईं बीते सप्ताह। बच्चों को उनके रिश्तेदारों के पास भेज दिया गया और 4 में से 3 महिलाओं को ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 2 पर स्लेवरी यानी गुलामी के आरोप लगाए और 1 महिला पर आतंकवादी संस्था का सदस्य होने के। अफगानिस्तान पर रॉयल माफ़ कीजिए एंटी सेमिटिज़म यहूदियों के खिलाफ जो लहर है लोगों में उसके खिलाफ रॉयल कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट जारी करने के बाद गवाहों से सुनवाई शुरू कर दी है। लोग रॉयल कमीशन के सामने पेश होकर अपनी आप बीती बयान कर रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स के फेरर इलेक्टोरेट में हुए इस सप्ताह बाई इलेक्शन में वन नेशन पार्टी ने ऐतिहासिक भारी जीत हासिल की है। 77 ईयर्स से लगातार जीत के बाद यह सीट कोएलिशन यानी लिबरल और नेशनल पार्टी ने खो दी और लिबरल लीडर एंगस टेलर के लिए यह बड़ी हार मानी जाती है और माना जाता है इसके बाद वो क्या करेंगे उस पर सवालिया निशान लग गया है। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियंस की गिनती अब 971,000 हो गई है, 971,000 यानी 1 मिलियन के पास पहुंच गई है। इंग्लैंड को अब पीछे छोड़ दिया है भारतीयों ने ओवरसीज कंट्री ऑफ बर्थ के आधार पर। अगले सप्ताह माधुरी दीक्षित, विक्की कौशल, वहीदा रहमान, सादत हसन मंटो, नयनतारा सहगल और मृणालिनी साराभाई जो कि डांसर हैं, नज़ीर हुसैन, मनहर उदास जो गायक हैं, असीत सेन जो एक्टर रहे हैं और ताराचंद बड़जाथिया प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे हैं, उनके हैं जन्मदिन। और जो मशहूर लोग हैं जिनके जन्मदिन हैं उनमें शामिल हैं जिड्डू कृष्णमूर्ति फिलोसोफर, रविशंकर श्री श्री रविशंकर धार्मिक गुरु, फखरुद्दीन अली अहमद 5वें प्रेसिडेंट भारत के, योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र सम्मानित और आज़ादी के सैनिक सुखदेव थापर। और कार्यक्रम समाप्त करने का समय अब आ गया है, आपसे इजाज़त लेने का समय आ गया है और मैं सुखदेव जसवाल आप सब महक सुनने वालों का धन्यवाद करता हूँ और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक दूजे का ध्यान रखें। और अगले सप्ताह फिर हाजिर होऊंगा अगर सब ठीक रहा तो। अंतिम गाना आपके लिए जो छोड़े जा रहा हूं वो है फिल्म पाकीज़ा का और लिखा है आप समझ ही गए कैफी आज़मी साहब ने। तो अगले सप्ताह तक के लिए नमस्कार।